0: ने मिंचु नगुं की सवा के थुबला मिंचु की गुरिम नांग कब क्या मे गुरि था नगुं ला पुक्तो मे बे थोने शो गुन कांग या मे बा या ने सांग थु
1: गुन थु या मे ने रि था थे वे रंग सिंग की या मे ने ला पेम यु गुरिम योंग ला शेप शे यु बे शेप शे पु छे ला गे लिन यु खबा आंग चा ले वो ये गु जि थु सुम गु गु गु छु सुम सा ने ला सिंग यांग चेन लम फु कांग मेन कांग की ने दे बु सर बे खा जि चिंग बी थांग ना ने दि थांग दि ने शि ग जि लु म छे दि खु खा जि चिंग बी थांग ना ने मे जे छोंग कांग लो गो छोंग गे ने थोंग छि ग्वेन बु लम लो गो लु छोंग थांग बे खा जि चिंग बी थांग ना ने मे जे छोंग कांग
2: आ खा जों खा सि गा जों से
3: जों द बियु नि दा फिन बा दा
4: यि जि नि मा से जिया
5: जोंग गो गु चिंग गु गम ने थंग गु पे के दे मो सिरो ना
6: 기랑츠니더리시네
7: 好不哈將給要讀明了大界前年明年幾年個列車畢竟避免堂鐵衛人行期明年中路蘇里面在新舊康堂迎通前在娘之期明了基這期別基心起過逼具營明了大界前年明年幾年天為年線突破坑窮窮無著米西畢竟避免堂鐵衛人行期明年中路蘇里面在新舊康期按照蘇的給面具起的撒多對於井鐵連邦天捐個堂 미토장세 직든숨 예고고고 뒤응아 니초
8: 난저 총튜니 빠라다 암라게 꾸레 근제 수남리 다당 안주 나르순디 빠라다 암라 십슈어디 난저 창미 웬게시 겐과리아 고야디 밀츠부마리 조디 양부탄 디부지 난저 링고다제야 차겐디게 차상차유 Lingur di tang soi shepcha di gengwa nam la piya chakta yabu chidu.
9: Sumo lingye kong kham sang, nabu lingye choy ngar gyun shi nam shi ngon de li chen sen sik na wara toje na shu guin. Nguyen zi che par shi na, jindu jubye chi gye nin ne chi juk ji nin par Rangchung khe sanay kha la chabam khaang bhabhe gyurim shik yung gyu thang te nang ne sabab thosay sanay kha ji la khaang chiwa ne chakwe phara bhab gyurin du. Chabam khaang bhabhe chi su sanay kha ka chwe zay thiang ang chang sum ne nga phara chak yu yin bhe. Thobu nambu chwe mi chu khe chang gok chwe sung nang gyu thay la thona nang gwa thang. Thak nang xin sabab thosay lam gyu kha la khaang so thang thakwa thep labu yu bhe. Pandu chungwa nang khen khe chobu khalu wa chwe jim dhru din cha thay la thona mang zam naro na. Mutune mao nyin ji rin ki nam si pi jo gor ne shu bi na togo rang zhong ne nying chi xir ju tang lu ju cham du lu ju la nam tip ne cha bam kang chung wa yang na kang ma cha ra bop ju sa chi ka ji la cha bam kang chung wa ne jing wai pa ra bop ju nying chi u ju tang cham du u ju la chen bu mang bu ko ne gop ri nam tip ju sa chi ka ji la cha bam kang sim sim bop ju ti mi sa chi mang chi wa ra chen bu nyung nyung ko ne gop ri chen bu mang bu ko ju san ni ni mu nga ri ki lu ju tang si zi lu ju
10: 포게르후주닝치시르주탕후주참두후주제라쳔부망부코네거르남티브주사제카지라차밤캉충아법주테미사제망시오라쳔부망부코르주참리야시테응오데카지시로나쳔괜추라남탕주쳔당창숨네주듄파르쳔주종라남탕주쳔당창레고숨네주주파르 샘춥제라남탕규 최당창래고옥 응안에 주행하파르